Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत. मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, सुबह के शेर खुल चुके हैं 7:05।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: Durandar title track. On that note, we hope that you had a Durandar weekend.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: आई होप या इट काइंड ऑफ लिव्ड अप टू योर एक्सपेक्टेशन. सारी चीजें जो आपने प्लान की थी वो बढ़िया से हो गई हो. दैट्स वॉट वी होपिंग फॉर. इन केस यू डिड समथिंग ऐतिहासिक, समथिंग दैट इज वर्थ शेयरिंग ऑन द रेडियो, सेंड मी अ व्हाट्सएप 0543091062. दैट्स द नंबर 0543091062. एंड या थोड़ी गप्पे शप्पे मारते हैं ना सुबह सवेरे. दिस इज द शो दैट रिचार्जेज योर बैटरीज लाइक नो अदर शो ऑन योर वे टू वर्क. सो इस पहले घंटे को हम कहते हैं द अर्ली मॉर्निंग रिक्वेस्ट. कौन सा वो गाना है जो आपकी दिमाग में चिपक गया है. इट्स लाइक वन ऑफ दोस, इफ यू लिसन टू अ गुड सॉन्ग इट कैन स्टेज विद यू, राइट? सो इफ यू हैव वन ऑफ दोस सॉन्ग्स जो आपकी नींद दूर भगाए, लेट मी नो 0543091062. कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल द लेटेस्ट स्मैश हिट तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज फ्रॉम आवारापन टू. इसके अलावा अगर आपको गाना सुनना है 0543091062, वेरी स्पेशल 10th ऑफ ऑगस्ट टुडे, बिकॉज अरे आज तो केबीसी का लेटेस्ट एडिशन इज गोइंग टू बी आउट. केबीसी इज रिलीजिंग टुनाइट. मोर ऑन दैट कमिंग अप ऑन दिस 10th ऑफ ऑगस्ट मंडे. गुड मॉर्निंग.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: The Big Thrill with Mansi. Weekdays 5 p.m. to 9 p.m. on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
4: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
5: ताकत का तरकाब विद डाबर शिलाजीत।
6: आज का पावर टिप, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ही बनता है स्ट्रॉन्ग डे।
5: ताकत का तरकाब विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

0: आई होप देयर सम रिस्पाइट फ्रॉम ऑल द इंटेंसिटी इन दिस फिल्म. जितनी भी चीजें मैंने देखी है, चाहे वो ट्रेलर हो, टीजर हो, गाने जो, इट्स ऑल सो इंटेंस. कुछ कुछ तो ब्रेक देना भाई प्लीज.
1: फ्लाइट्स बुक्ड, बैग्स पैक्ड, ब्रेन ऑलरेडी ऑन हॉलिडे, फास्ट क्लेम्स, फेयर प्राइसेस, रियल प्रोटेक्शन. फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस एंड मोर, insurancemarket.ae.
0: एंड टॉकिंग अबाउट इंटेंस, यार आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ना इंटेंसिटी, ताकत की कमी होना और कमजोरी फील करना इज अ वेरी वेरी कॉमन. स्ट्रेस, फास्ट फूड, फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, दे कैन ऑल मेक यू फील लो, बट यू डोंट हैव टू वरी. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स लीजिए, दे हेल्प इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड पावर. शेर की तरह बने मजबूत. हर दिन की शुरुआत करें वे डाबर शिलाजीत, मिटाए कमजोरी, बढ़ाए रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. 100% नेचुरल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स दैट मेक यू फील स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.

0: तुम बीमार हो?
1: नो।
0: तो लेती क्यों?
1: मेरे बॉडी में सेंसेशंस होते हैं, पिल्स उनको कंट्रोल करते हैं।
0: कैसे हैं सेंसेशंस?
1: सेंसेशंस जैसे सरसराहट, सनसनाहट, दूध को दाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, भरभराहट, थरथराहट, टपको पहाड़, भरभराहट, थरथराहट, चटपटाहट, अटपटाहट, शुभुगाहट, बुलबुलाहट, बुलबुलाई, शुभमिलाई।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood. जब मुल्क बनता है तो सिर्फ सरहदें नहीं, जिंदगियां भी बदल जाती हैं। Experience the emotion, courage and sacrifice in Batwara 1947. Directed by Rajkumar Santoshi.
3: Ab ye ghar hamara hai. Yahan ki har cheez hamari hai.
2: Starring Sunny Deol, Preeti Zinta, Shabana Azmi, Ali Fazal and Karan Deol. Releasing in cinemas on 14th August. Distributed by Al Nisr Cinema Film. Powered by Big 106.2.
4: Sia self-drives new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
5: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: What if your insurance gave you money back? Up to 8,000 dirhams a year in rewards, free with every policy through the My Alfred app. insurancemarket.ae.
7: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत। मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।

0: 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मॉर्निंग साबिस कर रहा बाईस मिनट। आई डिडंट माइंड रोलिंग डाउन द विंडोज ऑफ माय कार दिस मॉर्निंग। इट इज सडनली जस्ट अ बिट मोर प्लेजेंट देन इट वाज द लास्ट टाइम आई स्पोक टू यू। 37 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 51%, विंड्स ब्लोइंग एट 11 किलोमीटर्स पर आवर, हाईज ऑफ 40, लोज ऑफ 36 डिग्रीज।
0: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
1: ये है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Anybody listening from Azamgarh, koi Azamgarh ka banda yahan pe sun raha hai mujhe, to I'm sure there going to be lots of celebrations out there.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: Because if I'm not mistaken, Sarfaraz Khan is from Azamgarh, and Sarfaraz Khan has been selected in the Indian squad as a replacement. Kyunki Sai Sudarshan ki ek toe injury ho gayi hai. And that is why it opened the door for Sarfaraz Khan ahead of the Sri Lanka series, which is 15 August ko shuru hone wali. 15th of August is going to be a two-match test series, India versus Sri Lanka. Now, here's what the WTC equation is, right? World Test Championship, agar aap follow karte hain, it's like a two-year, you know, kind of packed schedule. And 2 saal ki mehnat mashakkat ke baad, there's a finale that is played. So if India have to make it to the finals of the WTC, they must win 8 out of the next 9 games. 9 mein se 8 match agar nahi jeete India ne, तो कोई चांस नहीं है. राइट नाउ इट सीम्स मोर लाइक अनदर साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया को शोडाउन इन द फाइनल्स. बट कमिंग बैक टू द इंडिया श्रीलंका टेस्ट सीरीज, एक वार्म अप गेम था, टूर वार्म अप गेम एंडेड विद इंडिया विनिंग बाय 6 विकेट्स. देवदत्त पर्टिकल स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड ऑल्सो सम नाइस कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम शुभमन गिल इन दैट वार्म अप गेम. वार्म अप राइट बिफोर 15th ऑफ ऑगस्ट व्हेन द फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका किक्स ऑफ. फिल्म का नाम भाई तेरा स्टार है, आंखों से तूने 2.0. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड.

0: देखो देखो वहाँ क्या
1: नाम है सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें। सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल, जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
7: Wow, your hair color looks stunning.
8: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
7: Yeah, right.
8: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
7: Really?
8: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
7: I'm buying it right now.
8: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
1: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक
2: मॉर्निंग 8:07।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: इट्स द दम दमादम रीबूट वर्जन फ्रॉम पति पत्नी और वो दो एक बंदे जिनका सोशल मीडिया बिल्कुल रीबूट तो नहीं बिल्कुल बूट हो गया है दैट इज रवि किशन.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, the beat of Bollywood.
0: And when I say boot, I don't mean like it's been booted out. It means that it's completely आसमान छू रहा है. It's sky high. It's getting totally viral. And Ravi Kishan से खुद पूछा गया कि यार आपको क्या लगता है कि I mean, did you ever expect that you go viral? He said, नहीं, हमें बिल्कुल नहीं लगता था कि हम viral. आप क्यों ऐसे viral हो रहे हैं? Why do you think that you're getting so Now, there's a thin line, right? Between saying that कोई बंदा चलता फिरता meme है and saying that somebody is a total legend on social media. अगर आप रवि किशन के फैन हैं तो you'll be saying the latter. कि नहीं नहीं बंदा भाई legend बनता है social media पे भी. He's connecting with Gen Z as well. And then if you're not, you'll say कि नहीं नहीं ये तो चलते फिरते meme है यार. So here's where it all started, this interview.
2: पहचान. Money follows, my brother. Money follows. नाम या दाम, नाम. दाम तो दौड़ के आएगा, नाम को खोजेगा. कहाँ है तू? नाम, लड़ाई तो इसी की यार.
0: मतलब अगर कोई बंदा है ना जो ओवर द टॉप है, इट इज रवि किशन. या ही जस्ट नोज हाउ टू काइंड ऑफ मिल्क अ मोमेंट. सो उनसे जब पूछा गया कि यार क्या लग रहा है आपको कि आप वायरल क्यों हो रहे हो आजकल, इसे कि यार जब आपका समय आता है ना, जब आपका टाइम आता है, एंड हियर्स वेयर आई एग्री विद रवि किशन, जब व्हेन इट इज योर टाइम, देन आपके छोटे से हैंड जेस्चर्स भी, आप छोटी सी भी चीज करोगे ना, वो वायरल हो जाएगी. एंड देन इन इज ट्रू ओवर द टॉप स्टाइल ही सेड के एक्चुअली क्या है ना कि आई एम अ फ्यूजन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. रवि किशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल पचिनो, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एंड माइकल जैक्सन. या 5 सेकेंड साइलेंस बिकॉज आई नो यू काइंड ऑफ पिक्चरिंग दैट इन योर माइंड. एल पचिनो प्लस अमिताभ बच्चन प्लस शाहरुख खान प्लस माइकल जैक्सन ऑल डांसिंग इन साइड वन रवि किशन. कैसे लगेंगे? That's not a very pleasant thought. But this is a pleasant song coming up in just a while. The Rang De Lal version of Oye Oye from Dhurandhar coming up in just a while. This is The Big Breakfast with me, Sid. Good morning. Big 106.2.

0: into The Beat of Bollywood.
1: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta, or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
2: Namaste.
3: Hola.
2: Assalamualaikum.
4: Bonjour.
5: Ni hao.
4: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची केसी कहाँ मिलेगा बताना।
7: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
6: अलरास बोले तो?
7: बोले तो मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते है।
6: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। Visit Al Ras, Middle East ka number one auto AC spare parts dealer.
8: Wow, your hair color looks stunning.
9: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
8: Yeah, right.
9: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
8: Really?
9: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
8: I'm buying it right now.
9: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
10: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स
11: लगता है बर्फ पड़ने वाली है
12: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा
13: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट
14: गुड मॉर्निंग 8:16 ऑन दिस 10th ऑफ ऑगस्ट मंडे की सुबह आज भी बारिश के चांसेस हैं दैट्स व्हाट द एनसीएम हैज सेड 37 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ बाय द वे टुमारो 11th ऑफ ऑगस्ट जो लास्ट फेज ऑफ समर है उसकी शुरुआत होगी 24th ऑफ ऑगस्ट के बाद द नाइट्स आर गोना गेट कूलर राइट नाउ इट्स नाइस एंड सनी ह्यूमिडिटी एट 46% हाईज ऑफ 40 लोज ऑफ 36 डिग्रीज सेल्सियस
13: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: जब मुल्क बनता है तो सिर्फ सरहदें नहीं, जिंदगियां भी बदल जाती हैं. Experience the emotion, courage and sacrifice in Batwara 1947. Directed by Rajkumar Santoshi.
2: अब ये घर हमारा है. यहाँ

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है। मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है। सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें सिर्फ 4,888 दिरहम में, 100% डिजिटल। जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें। आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae। अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन, अपना कारोबार अपना फ्यूचर।
1: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
2: Traffic brought to you by selfdrive.ae.
3: It is 8:41 on the clock. Let's take a look. सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. यहाँ पर आपको traffic मिलने वाला है the usual Musafa Industrial पर हल्का बुल्का traffic and this is heading out away from Rabdan going south. Everything else seems to be absolutely smooth going. चलते हैं दुबई Sharjah की ओर. 311 E11 heading south going towards Dubai. From Sharjah, both these arteries you'll find 8 to 10 minutes delay. Then there's a bit of congestion. Beirut Street पर भी D62 heading south. And Karama के आसपास भी आपको traffic मिलने वाला है D88 पर. And this is going towards the junction of 75. Speaking about the 75 Sheikh Rashid Streetway going towards the Dubai frame, you'll find 5 to 6 minute की देर. In case you spot something, give me a call. 800-1062.
4: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: जिंदा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: 8:50 on the 10th of August. Today is the 25th anniversary of one of my all-time favorite Bollywood movies.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: August 10th, 2001 में रिलीज हुई एक फिल्म जो कि जिसने डायरेक्ट की थी उनकी पहली फिल्म थी. इट वाज अ डायरेक्टोरियल डेब्यू. या लेट मी गिव यू सम क्लूज अबाउट दिस मूवी एंड लेट मी सी इफ यू कैन फिगर इट आउट. या थ्रू द क्लूज. इसकी ओरिजिनल, इट्स अबाउट थ्री फ्रेंड्स. ओरिजिनल स्टारकास्ट में ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन एंड अक्षय खन्ना थे. उसके बाद डिम्पल कपाड़ी हु प्लेज अ स्मॉल रोल इन दिस फिल्म कन्विंस सैफ अली खान टू बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म एंड देन वी ऑल सेड वाओ. ये सारी की सारी फिल्म पहले इंग्लिश में लिखी हुई थी. द एंटायर स्क्रिप्ट वॉज इन इंग्लिश एंड देन इट टुक द डायरेक्टर 2 months टू एक्चुअली ट्रांसलेट इट इन टू हिंदी. इनफैक्ट वन ऑफ द लीड स्टार्स सजेस्टेड कि इंग्लिश में ही करते ना. इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू बॉलीवुड फिल्म टू बी शॉट यूजिंग सिंक साउंड. यानी कि डबिंग का इस्तेमाल होता था उससे पहले, लेकिन वो जो बड़े बड़े लटकते हुए माइक यूज करके ऑन सेट साउंड रिकॉर्डिंग करने वाली ये पहली फिल्म थी. इट वॉज अ रियल लाइफ इंस्पिरेशन क्योंकि जो डायरेक्टर थे उनकी एक डायरी थी. डायरी से, रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड ये फिल्म लिखी गई थी. इसका साउंड ट्रैक वॉज इज टोटली लेजेंडरी. और जो मेन गाना था टाइटल ट्रैक, वो कंपोजर ने ब्रश करते हुए कंपोज किया था. इट जस्ट केम टू हिम व्हाइल ब्रशिंग हिज टीथ. जो मेन गाना इस फिल्म का था, साउंड ट्रैक का था, उसमें चमकीले दिन आता है, चमकीले दिन. एंड द डायरेक्टर डिड नॉट लाइक इट इनिशियली बिकॉज उन्हें लगता था कि ये गाना कम और डिटर्जेंट का एड ज्यादा लग रहा है. द एंटायर लेजेंडरी साउंड ट्रैक वॉज एक्चुअली कंपोज बाय द म्यूजिक डायरेक्टर्स इन 4 days इन खंडाला. 4 दिन में कंपोज किया गया था. सो विच फिल्म एम आई टॉकिंग अबाउट? अगर आपको पता है, इफ यू फिगर इट आउट, गिव मी अ कॉल राइट नाउ 800-1062 पर. इट हैड क्लासिक सीन्स लाइक दिस वन.
2: हाय, मैंने कहा हाय.
3: हाय,
2: कहाँ जा रही हो?
3: ये फ्लाइट सिडनी जाती है.
2: हाँ, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो?
3: सिडनी.
2: कितनी अजीब बात है, हम तीनों सिडनी जा रहे हैं.
3: तीनों?
2: हाँ, तुम, मैं और ये फ्लाइट.
0: If you know the film, of course you know the film. It's a legendary 2001 film. Give me a call 800-1062. But this is the big Bollywood quiz. Aap jeet sakte hain 2 open movie tickets.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड मॉर्निंग, 9:10।
1: बॉलीवुड।

0: एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
1: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
0: अलरास बोले तो
1: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
0: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
2: Sia, self-drive's new AI assistant. You type and Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No endless scrolling. Visit selfdrive.ae.
3: The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color. Made in Italy. Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
4: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
5: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
6: Good morning. It's 9:17 on the clock on this Monday morning. 38 degrees Celsius right now. Humidity at 41%. हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर पर आवर। Highs of 40, lows of 36 degrees.
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

विद प्रियंका चोपड़ा, वो तो सुन रहे हैं कि शेल्व हो गई है. डू यू थिंक देयर शुड बी अ दिल चाहता है टू? आई एम गोना पुट अप दिस पोल क्वेश्चन ऑन आवर इंस्टा 106.2 बिग एफएम. क्या दिल चाहता है टू बननी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक?

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Sham, yeah, Raju. Chhane nahi re baba. Aapte, baba, baba, babu rao, ganpat rao, aapte. Bol.
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
0: The Big Thrill with Mansi. Weekdays 5 p.m. to 9 p.m. on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
3: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहे आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: Sheikh Zaidro, that's the area of focus this morning. 19 minutes ka delay, and this is as you cross Dubai Creek heading towards Museum of the Future, heading south. Yahan pe 19 minutes ka delay. In case you have some reason for that, give me a call. Let me know 800-1062 per. Then there's D78 Al Karama mein. There's traffic that you can expect. Dera Clock Tower पे आती जाती सड़कें, वहाँ पे भी काफ़ी कंजेशन है. देरा वाटर फ्रंट मार्केट हेडिंग टुवर्ड्स द फिश मार्केट ऑल्सो यूल फाइंड 4 से 5 मिनट की देर. देन देर इज द यूजुअल 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. बोथ दीज आर्टरीज देर बी अ 6 to 7 मिनट का डिले मिनिमम. देन देर इज 611 पर भी ट्रैफिक जमा होना शुरू हो गया. नस्मा सेंट्रल पार्क हेडिंग साउथ गोइंग टुवर्ड्स अल अवीर. इन केस यू स्पॉट समथिंग एंड इफ इट्स सेफ टू कॉल, कॉल मी 800-1062.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: It's the most heartwarming thing that you'll see on social media this morning.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Yes, we are the Beat of Bollywood. And of course, jab Bollywood mein kuch amazing cheezein hoti hain, toh maza toh aata hi hai yaar. Ek once a singer, always a singer. Agar aap matlab ek performer hain, entertainer hain, toh aapko zaruri nahi ki aap ek stage hi dhoondte phire. In the sense, it doesn't have to be like a proper conventional stage, right? Kahin pe bhi hum toh shuru ho jate hain. हमें तो बस बहाना चाहिए. एंड उसका एक रीसेंट एग्जांपल वाज सोनू निगम. या सोनू निगम इज इन द न्यूज़ फॉर अ वेरी हार्ट वार्मिंग रीजन. ही अंडरवेंट अ सर्जरी. बिफोर यू आस्क ऑल द फैंस, भाई बद्दू बराबर से, एवरीथिंग इज फाइन. सो यू अंडरवेंट अ सर्जरी एंड वहां पर भी इज लाइक अंडर द नाइफ ऑन द ऑपरेटिंग टेबल ही टर्न्ड दैट इनटू एन इम्प्रॉम्प्टू कॉन्सर्ट. ही स्टार्टेड सिंगिंग वन ऑफ हिज फेवरेट मोहम्मद रफी सॉन्ग्स, सुहानी रात ढल गई ना जाने तुम कब आओगे. सुनिए इसको. ऑडियो ऑफ कोर्स इज नॉट परफेक्ट बट लिसन टू इट, इट्स टोटली अमेजिंग. यस, सोनू निगम इनसाइड द ऑपरेटिंग थिएटर. यू हियर द बीप बीप बीप इन द बैकग्राउंड.
2: हम तो गाना सुन रहे हैं, सर्जरी तो कब की हो गई है.
0: And then he goes on and starts singing the Antra also, yeah. मुझे लगता नहीं कि यार, although I love this, this is going totally viral. This is the most viral thing that's going on from the world of Bollywood this morning. But हाँ, while I enjoyed that video, but I hope कि सर्जरी करते वक्त ये डॉक्टर्स ज़्यादा उस गाने पे ध्यान नहीं दे रहे थे, because Sonu Nigam's voice है ना, it's Sonu Nigam after all. It has the potential to distract the best of us. तो सर्जरी के time तो नहीं सुन रहे थे ना. या बट एवरीथिंग इज फाइन, थैंक गॉड. इट टच सोनू निगम, एब्सोल्यूट क्लासिक कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल. बिजुरिया राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. गुड मॉर्निंग.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती.
1: नाम है सिड. सिड ऑन द बिग ब्रेकफास्ट ओनली ऑन बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड. The Big Breakfast brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy. Namaste.
4: Hola.
1: Assalamualaikum.
5: Bonjour.
6: Ni hao.
5: Did you know? Now just type and rent a car with Sia. Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
7: Introducing the Thumbe International Pathway Medicine Program at Gulf Medical University. Starting with 3 years of the higher diploma in preclinical sciences in the UAE, then completing the remaining 3 years at partner universities in Poland, Romania, the UK, Italy, Malaysia, Uzbekistan, Ghana, Malta or Egypt for medical degree with affordable tuition fees and scholarships. Your journey to become a globally qualified doctor starts here. Visit gmu.ac.ae or call 056-549-5755. Gulf Medical University. Where the world comes to learn.
1: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है. देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे.
1: बिग टाइम चेक.
2: गुड मॉर्निंग 10:09.
1: Bollywood.

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: Great news, Ajman. A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward, plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop.
2: कहते हैं ना, try and try till you succeed. हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश. डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. आपकी जीत, डाबर शिलाजीत. Consult your doctor before taking medicine and pharmaceutical products.
1: Listen to her every day.
3: Mugambo, khush hua.
4: Vlad, how was your day, Vicky?
5: Super, amazing.
4: Wow, kaisa amazing kya hua hai? Zara share one amazing thing that happened with you today.
5: Yeah, last night mera room chala gaya na, to main gaadi mein soya. So usi din, usi raat ke means jab next day hua, to mujhe apna personal room mila. कोई बंदा नहीं मेरे साथ, अकेला बड़े रूम में.
4: तो ये मतलब किराया तो देना पड़ रहा होगा ना एक्स्ट्रा, क्या फ्री में मिल गया?
5: नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट.
4: ये कौन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रूम्स दे रहा है?
5: देख लो
4: आपने, आपने बहुतों की नींद उड़ा रखी है मुझे लग रहा है.
5: क्या मतलब बहुत स्माइल करते हो, खुश रहते हो, दैट्स अमेजिंग.
4: आधे लोग मेरी हंसी के चक्कर में जो है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं. गॉड ब्लेस यू टू, थैंक यू सो मच.
5: मुझे तुमसे मोहब्बत है ना यार. ये किसने बोला?
4: मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? अगर तुम्हारी सच्ची होती तो मेरी नींद उड़ जानी चाहिए थी विक्की.
0: Keep your evenings electric. 5 PM to 9 PM. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: It is 10:28 on the clock on this Monday ki subah. Let's take a look sabse pehle at E11. Subah se kafi traffic wahan par tha, lekin good news, it is now down to about just 2 to 3 minutes extra. You'll spend at Treat Center roundabout heading south on E11 Sheikh Zayed Road. Bit of congestion yahan par bhi kafi well behaved traffic. 75 ki main baat kar raha hu. Sheikh Rashid Street going towards Dubai Frame. Bit of congestion you'll find. Business BM Metro Station ke aas paas ki sari sadkein. And then first Alkhel Street, Alkus 1st to 4th ke beech mein, you'll find a bit of congestion. Also 311 E11 heading south as usual. Going towards Dubai from Sharjah, both these arteries you'll face 5 to 6 minutes ka delay.
0: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
7: सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: Only looking, no touching. You've heard that before, right? It applies to the speed radars in Dubai as well.
1: The Big Breakfast with Zed on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
0: Yep, you heard that right. Dubai ke jo AI cameras hain, they're not just cameras. They've got AI in them. Iska kya fayda hai? Vaise ye bade high-tech the. Ab kya chakkar hai na, dekho. In detail, this is what you got to do. Sara ka sara jo aapka planning hai when it comes to your phone, do it beforehand. आपने वो खरीद लिया होगा डैशबोर्ड वाला जो फोन होल्डर है उसके ऊपर फोन लगाकर आप हीरो समझ रहे हैं अपने आप को, लेकिन जैसे ही आपने उस फोन को छुआ, यू गॉट दैट होल्डर द फोन ऑन दैट होल्डर एंड यू आर ड्राइविंग, एज सून एज यू टच योर फोन ऑन द होल्डर, खचैक, आपकी फोटो खींची जाएगी. एंड दिस एआई कैमरास आर सो हाई टेक दैट दे विल यू नो बी एबल टू डिटेक्ट व्हेन यू डू दैट. 800 दिरहम और 4 ब्लैक पॉइंट्स का आपको फाइन होगा. सो जितनी भी आपको सेटिंग करनी है, जितने भी आपको प्लेलिस्ट वगैरह लगाने हैं, जितना भी मैप गिरी करनी है, वो सब कुछ सेट करके फोन पे, देन यू पुट द फोन ऑन दैट होल्डर. लाइक हैविंग अ फोन ऑन द होल्डर इज नॉट इलीगल, बट इवन टचिंग इट इज एब्सोल्युटली इलीगल. जनहित में जारी है, तो प्लीज अगर आप कुछ भी इससे अलग कर रहे हैं, ध्यान रहे 800 दिरहम की चपत आपको लग सकती है, साथ में 4 ब्लैक पॉइंट्स. ये तो फिलहाल की बात है. सो ड्राइव सेफली right here in the UAE.
2: Gulabi saadi ani lali lal lal disate me bhari
0: raja Kamal Forte saadi. Sanju Rathod ka gana coming up in just a while. This is the Big Breakfast with me, Sid. Good morning.
1: Hey.

0: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Big Traffic, brought to you by selfdrive.ae.
2: Good morning, it is 10:40 on the clock and let's take a look सबसे पहले at the capital Abu Dhabi. कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बस हल्का बुल्का ट्रैफिक you'll find at E11 and this is heading north going towards Banias from Mafraq Industrial. इसके अलावा everything is smooth flowing, चलते हैं दुबई शारजा की ओर. The usual, you'll find Dubai South पे अराउंड DLC लॉजिस्टिक सिटी गोइंग टूवर्स इंडस्ट्रियल सिटी विल फाइंड अ बिट ऑफ कंजेशन 3-4 मिनट की देर. आई एम टॉकिंग अबाउट 311 ऑफ कोर्स एंड स्पीकिंग ऑफ विच 311 E11 हेडिंग साउथ गोइंग टूवर्स दुबई फ्रॉम शारजा तो आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा 4-5 मिनट का, लेकिन इंडस्ट्रियल या 6 के आसपास S112 S116 यूल फाइंड ईस्ट एंड वेस्ट बाउंड ट्रैफिक शारजा इंडस्ट्रियल पर. ऑल्सो 611 इज ऑल्सो स्टिल अ बिट बिजी हेडिंग साउथ गोइंग टूवर्स अलवीर. इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062 पर.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
1: नाम है सिद, सिद ऑन द बिग ब्रेकफास्ट, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ताकत का तरकाब विद डाबर शिलाजीत।
3: हर दिन को बनाइए बेटर विद अ स्ट्रॉन्ग रूटीन, हेल्दी हैबिट्स के साथ डाबर शिलाजीत को अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए और रहिए एक्टिव।
2: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
4: फ्लाइट्स बुक्ड, बैग्स पैक्ड, ब्रेन ऑलरेडी ऑन हॉलिडे, फास्ट क्लेम्स, फेयर प्राइसेस, रियल प्रोटेक्शन। फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस एंड मोर, insurancemarket.ae.
5: Same street, same shop, same hours. How is your shop busier than mine?
6: Because my shop doesn't close at 9. It's online.
5: Online? That takes months.
6: Not at all. I just picked a package. Now orders come in every day. Raspberry IT Services puts your business online. Pick a website package, we handle the rest. Starting from just 999 dirhams a year. Call or WhatsApp on 050-8323-481.
1: Big 106.2. That's my song.

0: Unlimited. The biggest Bollywood hits non-stop. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 054-309-1062. Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: जब मुल्क बनता है तो सिर्फ सरहदें नहीं, जिंदगियां भी बदल जाती हैं. Experience the emotion, courage and sacrifice in Batwara 1947. Directed by Rajkumar Santoshi.
2: Ab ye ghar hamara hai. Yahan ki har cheez hamari hai.
1: Starring Sunny Deol, Preeti Zinta, Shabana Azmi, Ali Fazal and Karan Deol. Releasing in cinemas on 14th August. Distributed by Al Nisir Cinema Film. Powered by Big 106.2.
3: भाई वो कुछ 2-4 हज़ार रुपए की जरूरत थी अपने.
4: दो या चार.
3: चार.
4: कब तक वापस लौटेगा?
3: यूं ही यहीं 4-5 दिन में.
4: चार या
3: पांच. पांच.
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन. ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा. द बिग बिंज विद सिड. प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ.
0: द बिग बिंज विद सिड. Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2, the beat of Bollywood. More requests, more dedications. This is Big Unlimited on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: To play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: द बिग मिक्स वीकडेज 1 to 5 PM ओनली ऑन बिग 106.2 ब्रॉट टू यू बाय इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए. बिग 106.2 दैट्स माय सॉन्ग.

0: to play your favorite song, WhatsApp your name, space your song and your message to 0543091062. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन. कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स.
0: मोर रिक्वेस्ट्स, मोर डेडिकेशंस. दिस इज बिग अनलिमिटेड ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। रफ्तार, पागलपन, हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपनी दिल की धड़कने अपनी कानों तक सुनाई दे। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 1:06।
1: Bollywood.

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड आफ्टरनून। आज भी बारिश के चांसेस, दैट व्हाट द एनसीएम हैज सेड। आज भी देयर आर चांसेस ऑफ रेन, बट 11th ऑफ ऑगस्ट इज व्हेन द फाइनल फेज ऑफ कड़ाके की गर्मी स्टार्ट्स अंटिल द 24th ऑफ ऑगस्ट। राइट नाउ इट्स 41 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज अक्रॉस द यूएई, ह्यूमिडिटी एट 50-55%।
2: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। Visit alras.me. Big

0: शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता, फिर अपन 1001% हिस्ट्री
1: बनाएंगे। Great news, Ajman! A fresh destination has just arrived in Helio. Safir Market is now open, bringing you unbeatable prices, amazing offers, and everything your family needs under one roof. Shop your favorite brands, including Eternity, Smart Baby, Shoes for Us, and Unique. Join Safir Plus today and enjoy an instant 15 dirhams welcome reward plus exclusive member discounts. Safir Market, more choices, more savings, more reasons to shop. Listen to her every day.
2: Mugambo, khush hua.
3: Hi, good evening, kaise hain aap?
4: Main theek hoon Abhishek, aap kaise ho?
3: Theek hoon, chal raha hai.
4: गुड बॉय हो ना आप? लग रहा है कि कॉलर के ऊपर बटन सारे बंद होते होंगे आपके, एक भी बटन नहीं खुला होता होगा। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, खेलेंगे मजेदार गेम, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर। तैयार हो?
3: हाँ तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा इजी।
4: क्विकली नेम 3 फ्रूट्स जो शुरू होते हैं विद एस।
3: इंग्लिश
4: बोले, वही भी बोल दो, बोलो बस। ये लो, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में 5 सेकंड ही खत्म हो गए। 3 चीजें दैट यू नोटिस इन अ गर्ल।
3: हाइट, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर।
4: अच्छा, ये देखो 3 सेकंड में इकलौता जवाब दिया है, वो है हाइट, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। अगर लड़की तुमसे लंबी हुई तुम्हें चलेगा?
3: ऑफ कोर्स चलेगा, बट बिहेवियर अच्छा होना चाहिए।
4: हाउ स्वीट, ग्रीन फ्लैग है ये बंदा। 3 बॉलीवुड गाने जिनमें दिल आता है।
3: दिल है कि मानता नहीं।
4: अरे अरे,
3: दिल दे दिया है।
4: हाँ, टाइम भी खत्म हो गया है।
3: दिल तुम्हारा
4: सनम, टाइम खत्म हो गया है।
1: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. Big Traffic. Brought to you by selfdrive.ae.
5: It's almost lunchtime and traffic aapko milega wahi usual hotspots par 311 11 heading south a bit 3 se 4 minute ki der. At the usual arteries going towards Dubai from Sharjah, a bit of congestion at Beirut Street, Damascus Street, 611 par bhi thoda about southbound traffic going towards Alawir. You'll find a bit of congestion going towards Russell Court Wildlife as well on 44. In case you spot something, give me a call. 800-1062 is my number.
1: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. This is The Big Mix on Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: Self-Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड। अगर आपको लग रहा है कि रवि किशन को पता है कि वो कितने बड़े मीम स्टार बन गए हैं, ही इज बिकम अ टोटल सुपर स्टार ऑन सोशल मीडिया। यार रवि किशन वाह सुपर स्टार बन गए। ही आई एम श्योर ही नेवर इमेजिन हिमसेल्फ टू बी लाइक सो पॉपुलर अमॉन्ग जेन जी एंड सोशल मीडिया का क्राउड। लेकिन या इफ यू वंडरिंग व्हाट्स हैपनिंग, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड।
2: पहचान मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज।
1: ऐसे इनके जो मीम्स हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हो चुके हैं एंड रवि किशन ने कहा कि उन्हें पता है, ही इज रियलाइज्ड दैट ही इज बिकम अ जेन जी मीम स्टार। उन्होंने कहा कि स्ट्रेंज लिटिल जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस, अनस्क्रिप्टेड मोमेंट्स, ये सब दे कीप गोइंग वायरल क्योंकि यंगर ऑडियंसेस कनेक्ट विद इम्परफेक्शंस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट यार? या इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया है रवि किशन ने, ओवर इंटेलेक्चुअलाइज भी कर दिया है। Audiences connecting with imperfections and that is why they are connecting with Ravi Kishan. What do you think about this analysis? Yeah, डालता हूँ कुछ टाइम में एक poll question on our Insta 106.2 Big FM. That is our Insta handle 106.2 Big FM. And describing himself, Ravi Kishan compared himself to Al Pacino, Shah Rukh Khan, Michael Jackson, and they are somehow dancing inside his body. He said, yeah. That is the perfectly funny comment. I don't know why he associates himself with imperfection. This is the Big Mix with me, Sid. Good afternoon. Oh

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहे है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.

Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड. दिस वाज ब्रॉट यू बाय इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए. 30,000 गूगल रिव्यूज विद अ 4.8 स्टार रेटिंग बिल्ट इन द यूएई, ट्रस्टेड अक्रॉस द यूएई. Every review is a story of trust. Every policy is a promise kept. InsuranceMarket.ae.

0: Bucket Katarkav with Dabur Shilajit.
1: आज का पावर टिप, अपने दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से ही बनता है स्ट्रॉन्ग डे।
0: ताकत का तड़का विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
2: नमस्ते।
3: ओला।
2: अस्सलाम वालेकुम।
4: बोंजूर।
5: नी हाओ।
0: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: Your holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
7: Big 106.2. That's my song.

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 2:06।
1: Bollywood.

0: you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae. Call 800-ALFRED 24/7.
1: This is the Big Mix with me, Sid, right here on Big 106.2 all the way till 5 p.m. And Akshay Kumar ne kaha that even fantasy films does not mean that anything goes. Agar kuch suddenly kisi ke paas supernatural powers aa gaye, the movie still has to kind of establish the logic. Ye power aaya kahan se, ja kahan raha hai, ye rules kya hai is power ke, etc. So Bhoot Bangla ke dauran comments inhone kiya, discussing Bhoot Bangla with Priyadarshan. So Akshay Kumar and Priyadarshan sitting and having a conversation about Bhoot Bangla, in which Priyadarshan apparently agrees, says that unki jo film hai tries to provide a rational, scientific, you know, reason, a logic, even though it deals with supernatural material. So Akshay essentially attacking the old, अरे यार ये picture है, दिमाग घर पे छोड़ के आओ. Usually उनकी फिल्मों के साथ ये करना पड़ता है, लेकिन he's saying कि ऐसा मत करो. तो करे क्या यार, क्या लगता है आपको, does comedy fantasy get a free pass from logic, or does bad logic still ruin a fun movie? क्या लगता है आपको, दिमाग घर पे छोड़ने का logic, does it really apply, या हल्का फुल्का दिमाग तो हम लोग सब पॉकेट में लेकर ही चल रहे होते हैं, चाहे कैसी भी फिल्म क्यों ना हो. बट पुट अप अ पोल अबाउट दिस ऑन आर इंस्टा, डोंट फॉरगेट 106.2 बिग एफएम, दैट्स आर इंस्टा हैंडल. कमिंग अप नेक्स्ट, देयर आर टू ऐतिहासिक हिस्टोरिक बॉलीवुड मूवीज दैट आर सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी टुडे द 10th ऑफ ऑगस्ट. दोनों को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं. कीप इट लॉक, दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड.

0: Self Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2 पर दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड एंड आज 26th एनिवर्सरी है ऑफ दिल चाहता है, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. आई थिंक अगर सिनेमा हॉल में कोई फिल्म मैंने सबसे ज्यादा बार देखी है सिनेमा हॉल में, इट इज दिल चाहता है. आई थिंक इट वाज 7 टाइम्स व्हेन इट रिलीज्ड. आई जस्ट कुडंट गेट इनफ ऑफ वॉचिंग दैट मूवी. मतलब यार ये क्या बना दिया वाली एक इमोशन थी मेरे माइंड में. सो लेट्स लिसन टू वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स.
2: प्रॉब्लम है यार, प्लीज अब ये मत कहना कि सब कुछ होने के बाद तू उसे चाहने लगा है.
3: देख समीर, मुझे कोई शक नहीं कि तुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन उतना ही यकीन इस बात का है कि 3 महीने बाद तुझे किसी और से प्यार हो जाएगा.
2: नहीं आकाश, दिस टाइम आई एम सीरियस. देख, मैं हमेशा समझता था मैं जानता हूं प्यार क्या होता है. आज पता चला मैं कितना गलत था.
3: अच्छा?
2: यार आकाश, आज जब मैं पूजा से बात कर रहा था तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो सब लड़कियां जो मेरी जिंदगी में थी उन्हें मैं चाहता तो बहुत था, मगर गलती से उस चाहत को प्यार समझ रहा था.
4: और तू पूजा से प्यार करता है?
2: हाँ, यही तो प्रॉब्लम है. मैं पूजा से प्यार करता हूँ.
4: तो फिर तुझे उसे बता देना चाहिए ना.
3: मेरी मान, किसी को कुछ मत बता, तेरा कोई भरोसा नहीं. आज पूजा कल कोई दूजा.
1: आज पूजा कल कोई दूजा जैसे क्लासिक डायलॉग्स, दे वर रिटन इन इंग्लिश इनिशियली. पूरी की पूरी फिल्म इंग्लिश में लिखी थी फरहान अख्तर ने. इट टुक हिम 2 मंथ्स टू एक्चुअली ट्रांसलेट द एंटायर फिल्म इनटू हिंदी एंड सो मेनी मोर नगेट्स फ्रॉम दिस एब्सोल्यूट क्लासिक कमिंग अप. फिलहाल दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम दैट फिल्म दिल चाहता है सेलिब्रेटिंग 26 ईयर्स टुडे द 10th ऑफ ऑगस्ट. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड.

0: आया रे तू
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज अपने दम पे बनाए मैं नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून 3:06।
1: बॉलीवुड।

0: This is the Big Mix on Big 106.2. With me, sit all the way till 5 o'clock. Aaj 10th of August. काफी special दिन. If you're a Bollywood film fan, दिल जाता है कि 25th anniversary तो है ये तो हम बता चुके हैं. लेकिन it is also another ऐतिहासिक film की anniversary today, the 10th of August. It is the 19th anniversary, if I'm not mistaken. So listen to this dialogue. It's not a contest for any prize. Play for pride, not for prize. So, but इसको सुनके आप immediately पहचान जाएंगे कौन सी फिल्म की आज एनिवर्सरी है. Here goes.
1: तुम्हें मुझसे तकलीफ नहीं, तुम्हें तकलीफ इस बात से है कि मैंने तुम्हें

0: तो सुन के आप इमीडिएटली पहचान जाएंगे कौन सी फिल्म की आज एनिवर्सरी है। Here goes.
1: तुम्हें मुझसे तकलीफ नहीं, मैं तकलीफ इस बात से है कि मैंने तुम्हें एक दूसरे के बदले नहीं, एक दूसरे के साथ खेलने के लिए मजबूर किया। अपने से पहले अपनी टीम के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया, अपनी स्टेट से पहले इंडिया के लिए खेलने के लिए मजबूर किया।
0: कौन सी ये फिल्म है? दैट इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनिवर्सरी टुडे द 10th ऑफ अगस्त। व्हाट्सएप मी 0543091062। मोर ऑन दिस फिल्म कमिंग अप इन जस्ट अ वाइल राइट हियर ऑन द बिग मिक्स विद मी सिड।

0: Market.ae.
1: InsurersMarket.ae.
0: Listen to her every day.
2: Mugambo, खुश हुआ.
3: Hi, good evening. कैसे हैं आप?
4: मैं ठीक हूँ अभिषेक, आप कैसे हो?
3: ठीक हूँ, चल रहा है.
4: गुड बॉय हो ना आप? लग रहा है कि कॉलर के ऊपर बटन सारे बंद होते होंगे आपके, एक भी बटन नहीं खुला होता होगा. हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, खेलेंगे ये मजेदार गेम, इट्स कॉल्ड द 5 सेकंड रूल. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं आपको दूंगी कुछ कैटेगरीज, 3 चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. तैयार हो?
3: हाँ तैयार हूँ, लेकिन थोड़ा इजी.
4: क्विकली नेम 3 फ्रूट्स जो शुरू होते हैं विद एस.
3: इंग्लिश में बोले,
4: वही भी बोल दो, बोलो बस. ये लो, इंग्लिश हिंदी के चक्कर में 5 सेकंड ही खत्म हो गए. 3 चीजें दैट यू नोटिस इन अ गर्ल.
3: हाइट,

0: पर्सनालिटी एंड बिहेवियर।
1: अच्छा, ये देखो 3 सेकंड में इकलौता जवाब दिया है, वो है हाइट, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। अगर लड़की तुमसे लंबी हुई तुम्हें चलेगा?
0: ऑफकोर्स चलेगा, बट बिहेवियर अच्छा होना चाहिए।
1: हाउ स्वीट ग्रीन फ्लैग है ये बंदा। 3 बॉलीवुड गाने जिनमें दिल आता है।
0: दिल है कि मानता नहीं।
1: अरे अरे,
0: दिल दे दिया है।
1: टाइम भी खत्म हो गया है।
0: दिल तुम्हारा
1: सनम, टाइम खत्म हो गया है।
2: Keep your evenings electric. 5 p.m. to 9 p.m. The Big Thrill with Mansi. Only on Big 106.2. The Beat of Bollywood. This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: बर्फ तो दूर की बात भाई, लेकिन कल से द फाइनल फेज ऑफ पीक समर इज गोना स्टार्ट। सो कल से लेकर 24th of August, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट कूलर नाइट्स, बट फिलहाल इट इज 43 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज अक्रॉस द यूएई, ह्यूमिडिटी एट 55 to 60%।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: हॉलीवुड। आपकी जीत डाबर शिलाजीत आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
1: नमस्ते।
2: ओला।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: बोंजूर।
4: नी हाओ।
5: डिड यू नो नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
6: The Big Jill.
7: All my favorite music in one spot.
6: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Big 106.2. That's my song.

0: गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक।
2: गुड आफ्टरनून, 4:06।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: बजे सिर्फ बिग 106.2 पर।
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: गुड आफ्टरनून। द प्रेडिक्शन इज के कल से द फाइनल फेज ऑफ तपती हुई गर्मी यानी कि पीक समर इज गोना स्टार्ट टिल द 24th ऑफ अगस्त। उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट देयर टू बी सम कूलर इवनिंग्स। या इट इज 43 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज राइट नाउ दिस इवनिंग। ह्यूमिडिटी एट 60-62%।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2। बिग

0: Sia, self-drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.
1: Big 106.2 पर this is the big mix with me Sid. One of the most क्या कहते हैं यार silly dating rumors to come out in the recent past. According to me, I don't know. I shouldn't say silly now because there's no smoke without fire वाली बात है. But what do you think about Mrunal Thakur dating Yashasvi Jaiswal? मतलब नहीं ना. You, it's, I don't know. It just doesn't make any kind of sense. तो क्या कहें यार. I just don't know how to express it. But कभी कभी ऐसे किस पेयरिंग को देख के लगता है कि नहीं नहीं यार ये नहीं यार यशस्वी जायसवाल मृणाल ठाकुर के बारे में. बट देयर वाज लॉट्स ऑफ गॉसिप डूइंग द राउंड्स राइट. दे वर स्पॉटेड विजिटिंग अ कैफे टुगेदर, स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग अ डेटिंग थियरी बिहाइंड इट, ऑल द पैप्स आउट देयर. लेकिन एक कुछ 6-7 पैराग्राफ का PR स्टेटमेंट जो यूजुअली सेलिब्रिटीज करते हैं वो छापने की जगह मृणाल ठाकुर ने सिर्फ 2 शब्दों का इस्तेमाल किया. ब्रो रिलैक्स, एसेंशियली क्वेश्चनिंग हाउ पीपल हैव अराइव्ड. या क्या क्या क्या क्या लॉजिक, एग्जैक्टली व्हाट आर रिएक्शन इज, दैट्स व्हाट मृणाल ठाकुर्स रिएक्शन इज. मतलब या सेलिब्रिटी गॉसिप पैपराजी यही जाने इनके काम. बट या शी हैज वेहमेंटली रिजेक्टेड द क्लेम कि शी इज एक्चुअली डेटिंग यशस्वी जायसवाल. पर ये भी इट इज वेरी कॉमन के राइट आफ्टर समबडी रिजेक्ट्स अ पर्टिकुलर क्लेम उसके बाद वो तुरंत उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. तो ये बॉलीवुड की दुनिया है भाई, डोंट बी सरप्राइज. दिस इज द बिग मिक्स विद मी सिड राइट हियर ऑन बिग 106.2. वी आर द बीट ऑफ बॉलीवुड. गुड आफ्टरनून.

0: ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਰਾਜੋ
1: ਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਆਪਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬੂ ਰਾਓ ਗਣਪਤ ਰਾਓ ਆਪਤੇ ਬੋਲ
2: 106.2 The Beat of Bollywood. Wow, your hair color looks stunning.
3: Thanks. I did it myself this morning in 5 minutes.
2: Yeah, right.
3: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
2: Really?
3: Yeah. And with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
2: I'm buying it right now.
3: Get maximum gray coverage, vibrant color, and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
4: Missed your morning buzz?
5: Yes,
6: there's an app called Stepa in which you know you can. Have you heard of that app?
7: No.
6: In which you can actually bet on yourself. आप अपने आप पे बोली लगा सकते हैं कि आज का जो स्टेप काउंट है मैं कंप्लीट करूंगी कि नहीं करूंगी. एंड सो यू कैन यू नो $5 $10 ऐसे डाल सकते हो आप. सो इफ़ यू कंप्लीट इट यू गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी. इफ़ यू डोंट देन यू लूज बिकॉज यू नो somebody probably मारवाड़ी केम अप विद दिस थॉट कि जब तक पैसों की बात नहीं होगी तब तक लोग अपना स्टेप काउंट कंप्लीट नहीं करेंगे. बताओ आइडिया अच्छा है कि बुरा है? आप किंजल नाम से तो गुजराती लग रहे हो. वेयर आर यू फ्रॉम?
7: आई एम फ्रॉम दिल्ली.
6: आप दिल्ली से हो फिर भी इतने कंजूस हो यार, क्या है यार? मैंने कहा $5 इतना भी पैसा खुद पे नहीं लगा. इट्स लाइक पुटिंग मनी ऑन योरसेल्फ. इट्स नॉट लाइक यू गिविंग इट आउट इन चैरिटी, राइट?
2: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. Traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: Good evening. We call it the reverse traffic. यानी कि घर जाने का traffic शुरू हो चुका है. अभी 5 से 6 मिनट की देर आपको मिलने वाली है at both 3:11 and 11. E11 पर Sheikh Zayed Road going towards Trade Center roundabout and also as you get out of Media City going towards Umm Sakim Street you'll find 4-5 minute ki der. Then 44 Alkhel Road पर going towards Russell Core Wildlife Sanctuary. From Business Bay you'll find 5 to 6 minutes ka delay. In case you spot something give me a call 800-1062 पर.
2: Sia, Self-Drive's new AI assistant, helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurersmarket.ie.
1: This is The Big Mix on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Big 106.2 पर आज के समाचार डबल शिफ्ट वाले बस यहीं तक. इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ फ्रॉम द बिग मिक्स. मिलूंगा आपसे कल सुबह शार्प एट 7:11. दैट इज द परफेक्ट वे टू स्टार्ट योर डे. इट्स कॉल्ड द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड. दुनिया भर के गप्पे शप्पे, सम फैबुलस प्राइजेस फॉर यू टू विन. कुछ भी करके आपकी बैटरीज रिचार्ज करने का काम करता है वो शो. सो आई विल सी यू टुमारो. इन द मीनवाइल डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल्स. वी आर 106.2 बिग FM. दैट्स आवर हैंडल ऑन इंस्टाग्राम, 106.2 बिग FM. आई एम सिड सेठ, SIDSETH. टिल टुमारो, इन Enjoy the rest of your Monday. Bye-bye.

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: Good evening. This is the Big Thrill. कितनी भी कोशिश कर लो, अच्छा वक्त जल्दी गुजर ही जाता है. मैं वीकेंड की बात कर रही हूँ. मंडे आ चुका है, बट मंडे ब्लूज को भगाने के लिए लॉन्ग वीकेंड के बारे में सोचना बहुत जरूरी है. एंड वो लोग जिन्होंने अपनी टिकट विकेट बुक करा ली थी, सोचा था कि मंडे की छुट्टी होगी. हाँ, समझ रही हूँ मैं आपका दर्द. फिलहाल ऑल सेट टू कीप यू कंपनी अंटिल 9 व्हाइल यू आउट एंड अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. अगर आप गाना गाने का शौक रखते हैं, बाथरूम सिंगर हैं, क्या हुआ, प्लेटफॉर्म यहाँ पे है. अपने टैलेंट को आप पूरे शेखजाद रोड को सुना सकते हो. विल स्टार्ट द कारियोकी इन जस्ट अ बिट. फैंटास्टिक म्यूजिक, बड़ी सारी गप्पे शप्पे मारनी है. एंड ऑफ कोर्स ओवर द वीकेंड अगर आपने भी देखी मैं वापस आऊंगा, देन यू लिटरली ऑब्सेस्ड विद द मूवी जस्ट लाइक आई एम. किक स्टार्टिंग द शो विद

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है, देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक, गुड इवनिंग, द टाइम राइट नाउ 5:06।
2: Bollywood.

0: toured Dubai families since 1995. The kids we covered then have kids we cover now. Get health insurance from insurancemarket.ae.
1: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The beat of Bollywood.
2: हाँ जी, गुड इवनिंग. यह बिग थ्रिल मानसी एंड मंडे का सबसे थ्रिलिंग एक्साइटिंग पार्ट होता है वापस घर जाना. मंडेज आर मंडेज, कितना भी ट्राई कर लो मंडे आता ही है और उतना ही लंबा लगता है. फिलहाल व्हाइल यू आर हेडिंग होम, द बेस्ट वे टू रिलैक्स इज टू सिंग. एंड अगर आप भी माहौल बनाना चाहते हैं, गाना गाने का शौक रखते हैं, आए या ना आए इज नॉट अ प्रॉब्लम. आप गाओ, यहाँ पे तालियां फ्री मेरी तरफ से. वहां गाड़ी से क्या मिलता है दैट आई ऑनेस्टली डोंट नो. बट इट्स टाइम फॉर द कारियोके. लाइक आई से, देसी लोगों को दो चीजों का बहुत शौक होता है, अच्छा खाना और जैसा भी गाना.
1: Karaoke.
2: All right, मंडे शाम का ट्रैक पेश किया जाए.

0: मैंने पूछा भी नहीं, अभी फोन बजने शुरू हो गए। इतना पॉपुलर कैरियोके ट्रैक है ये, अगर आपने गेस कर लिया आप भी गाते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज ईदर गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062 या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल कॉल यू बैक 0543091062 पर। इट्स टाइम फॉर द कैरियोके।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ, बहुत गहरा जाना चाहता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, फिर अपन 1001 टका हिस्ट्री बनाएंगे। 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Monday evening, we are karaoke-ing and बड़े खूबसूरत नाम के साथ आ चुकी हैं रिनोशिता. इशिता सुना है, हर्षिता सुना है, रिनोशिता.
2: Actually, it's a Japanese name, which means love.
1: Wow, आपकी मम्मी ने सुशी खाई थी जब आप होने वाली थी.
2: पता भी नहीं होगा सुशी क्या होता है.
1: जापानीज नाम रख दिया है तो ऑफकोर्स उन्हें तो पता ही होगा.
2: मेरे पापा के जो फ्रेंड है, he was from Japan.
1: This is lovely. तो आप गए हो जापान?
2: नहीं, never. But yes, I wanted to.
1: You should go. आपका नाम जापान से इंस्पायर्ड है. फिलहाल, how was your Monday? कैसा रहा?
2: As usual, Mondays are always hectic. But yeah.
1: I know. कुछ है. Monday कितनी भी कोशिश करो, खुशी होती नहीं है. फिलहाल, रिनोशिता, आप गाना गाती हैं?
2: हाँ, maybe bathroom kind of singer.
1: चलो जी, आज देखते हैं हमारी जापानीज अलका याग्निक हमारे लिए यहाँ पे क्या करती है. It's time for the karaoke. Right, here's your track. हाँ जी.
2: इस प्यार को मेरी तरफ, इस प्यार से समथिंग.
1: फिर से गाओ.
2: प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा.
1: टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन टिन ट

0: जाएगा। I think इतना बहुत है।
1: जितने गुस्से में रिनौशिता ने शुरू किया था ना, जैसे हो भी रहा होगा वो पीछे हट जाएगा।
0: वो बोलेंगे इस पे तो नहीं होएगा।
1: Not bad at all. मजा आया कि नहीं आया?
0: हाँ, मुझे तो आया।
1: अच्छा, कौन था
0: वो
1: लड़का जिसने पहली बार ये गाना आपको डेडिकेट किया था?
0: नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था।
1: अरे, तो आपने किसी को किया था?
0: तब तो फैंटेसी होती थी ना, मेबी समवन विल सिंग लाइक दिस, बट नो वन।
1: टिल डेट नोबडी हैज संग दिस सॉन्ग फॉर यू?
0: नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ही बुरे सिंगर है।
1: ऐसा आपने भी कोई बहुत इंडियन आइडल लेवल का नहीं गाया?
0: Exactly, जैसे तो तैसे।
1: Bye, Rinoshi, but we're so much fun having you on air. आज घर जाती ना, एंट्री मारती गाना पति के लिए, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: मैं तो ये बताने भी नहीं वाली, नहीं तो वो कहेंगे वाई।
1: वाई क्या होता है? शौक है, दिल में जो आया वो करना चाहिए। प्लेटफॉर्म मेरा, आप टेंशन मत लो, पतियों की होता रहता है उनके साथ बहुत कुछ। You have a great evening and a great drive back home, and thank you so much.

0: बाय।
1: पुराना अगर आप भी ये गाना गाते हैं, आपको गाना गाना पसंद है, 800-1062 इज माई नंबर, गिव मी अ कॉल।
2: Karaoke Beat 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.

has begun. As millennials, I think after ages, we'll go to the theatre, probably watch a first day, first show, Avara Pantu, releasing on the 14th. And I think बहुत नॉस्टैल्जिया होने वाला है इमरान हाशमी को इतने सालों बाद ऑन द बिग स्क्रीन वो करते हुए देखना जो हम देखकर बड़े हुए हैं. इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ मूवीज दैट ही डज.

फिलहाल यहाँ पे गाना मैं आपको सुनाऊंगी, गाएंगे आप, वी आर कैरियोकिंग। अगर आप भी सिंगिंग करना पसंद करते हैं, गेट इन टच 800-1062 पर।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हां जी, वी आर कारियोकिंग मंडे की शाम। ट्रैफिक में अटके अटके क्या करें, गाना गाते हैं, मन लगाते हैं, माहौल बनाते हैं। यू नो, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। डोंट वरी अबाउट द ऑडियंस, ऑडियंस मेरी आवाज आपकी, टेंशन नहीं लेनी है। गाना गाने का शौक रखने वाले अगर दिल से गाते हैं तो वो अच्छी आवाज बाहर आती है ना अभिषेक?
2: बिल्कुल, अगर दिल से गाओ तो आवाज अगर दिल से निकले वो गाना डेफिनेटली अच्छा ही होगा।
1: बिल्कुल, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल से निकली आवाज जो है वो कान के पर्दों के लिए हानिकारक हो, बट दिल तक पहुंचनी चाहिए। क्या करते हो अभिषेक?
2: एक्चुअली मैं सेल्स में काम करता हूँ।
1: वेरी नाइस, मजा आ रहा है?
2: हाँ बिल्कुल, मजा आता है।
1: हाँ, ये जो सरकास्टिकली बोला ना, मजे ही मजे, समझ गई मैं। फिलहाल आपने अभी रिश्ते की नाम ही भूल गई, जापानीज नाम था ना उनका, हीरोशिता का गाना सुना? हाँ, हीरोशिता का गाना सुना, कैसा लगा आपको?
2: अच्छा था।
1: अच्छा, उनके पति ने कभी उनके लिए गाना नहीं गाया, आपने किसी के लिए गाया?
2: बैड लक था। हाँ, मैं अपनी वाइफ के लिए गाता हूँ।
1: हाँ, बस अपनी वाइफ तक ठीक है, मुझे लगा कह रहे थे मैं तो सबकी वाइफ के लिए गा दूँ। फिलहाल गाना आपने पहचान लिया है, अब हम सुनेंगे अभिषेक जी की आवाज में आज शाम ये मधुर गीत, राइट हियर विद द कारियोकी।

0: हो जाएगा इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा।
1: ऐसा गाओगे तो 100% हो जाएगा, बट उन्होंने पहले ही बता दिया है कि वो सिर्फ अपनी बीवी के लिए गाते हैं। बहुत अच्छा गाया अभिषेक, आई थिंक यू लव दिस सॉन्ग, द वे यू वर सिंगिंग, यू नो द लिरिक्स, क्या कहानी है इस गाने की?
2: एक्चुअली मैंने जब पहला फोन लिया था मल्टीमीडिया, जब नोकिया का फोन था, तो आई थिंक ये पहला मेरा रिंगटोन था, जब मतलब फोन बजता था तो यही गाना बजता था।
1: अरे वाह,
2: एक्चुअली मतलब मेरा फोन नहीं था, तो एक्चुअली मेरे पापा का फोन था तो वही बजता था।
1: आपकी बीवी के आप ये गाना उनके लिए गाते हैं, हम लोग तो बस वेट ही करते रह गए कि हमारी जिंदगी का भी अभिषेक आए, इतने सुर में ना भी गाए बस गा दे। बट अभिषेक मजा आ गया यार, बहुत अच्छा गाया आपने। WhatsApp 0543091062 पर।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक। गुड इवनिंग, 6:10।
2: Bollywood.

0: when you shake that thing, you really make the bell ring, and they go ring ding ding.
1: Big. Big. 106.2.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
4: Insurancemarket.ae. The worst part of a small accident isn't the dent, it's what can happen after. But with us, you are just one call away from your dedicated claims manager. Get car insurance from insurancemarket.ae.
5: Same street, same shop, same hours. How is your shop busier than mine?
6: Because my shop doesn't close at 9. It's online.
5: Online? That takes months.
6: Not at all. I just picked a package. Now orders come in every day. Raspberry IT Services puts your business online. Pick a website package, we handle the rest. Starting from just 999 dirhams a year. Call or WhatsApp on 050-8323-481.
7: Did you hear that? That's the sound of something big landing at Papa John's. New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. Six bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
8: Missed your morning buzz?
9: There's
10: an app called Stepa in which, you know, you can... Have you heard of that app?
11: No.
10: In which you can actually bet on yourself. आप अपने आप पे बोली लगा सकते हैं कि आज का जो स्टेप काउंट है मैं कंप्लीट करूंगी कि नहीं करूंगी. एंड सो यू कैन $5 $10 ऐसे डाल सकते हो आप. सो इफ यू कंप्लीट इट यू गेट दैट अमाउंट ऑफ मनी. इफ यू डोंट देन यू लूज बिकॉज यू नो समबडी प्रॉब्ली मारवाड़ी केम अप विद दिस थॉट कि जब तक पैसों की बात नहीं होगी तब तक लोग अपना स्टेप काउंट कंप्लीट नहीं करेंगे. बताओ आइडिया अच्छा है कि बुरा है? आप किंजल नाम से तो गुजराती लग रहे हो. वेयर आर यू फ्रॉम?
11: आई एम फ्रॉम दिल्ली.
10: आप दिल्ली से हो फिर भी इतने कंजूस हो यार, क्या है यार? मैंने कहा $5 इतना भी पैसा खुद पे नहीं लगा. इट्स लाइक पुटिंग मनी ऑन योरसेल्फ. इट्स नॉट लाइक यू गिविंग इट आउट इन चैरिटी, राइट?
1: एनर्जी एंड एक्शन मंडे टू फ्राइडे 7 AM टू 11 AM द बिग ब्रेकफास्ट विद सिड ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
12: लगता है बर्फ पड़ने वाली.
13: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
1: Big weather update brought to you by Alras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
14: Still 39 degrees, low jayega around 36. Like I said, bas do teen hafte ki aur garmi hai according to the weather department. Phir acche din aayenge. Filhal humid

0: हफ्ते की और गर्मी है अकॉर्डिंग टू द वेदर डिपार्टमेंट, फिर अच्छे दिन आएंगे। फिलहाल ह्यूमिडिटी 42% पे है।
1: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: Self Drive's new AI assistant helps you rent the right car in just a few minutes. Visit selfdrive.ae. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Alright, we're playing the 5-second rule. It's a fun game. You get 5 seconds. I give you a few categories. 3 cheeze batani hoti hai 5 second ke andar. Sounds easy, but easy hai nahi. Filhal aa gayi hai Shilpi. Good evening.
2: Good evening. How are you?
1: I'm good. How is your Monday?
2: Monday was very boring today.
1: Yeah, Monday hamesha hi boring hota hai. Weekend pe kya kiya? You didn't go to office. You found it boring. 1 second. Let me just finish this. You didn't go to office and that is why you found the Monday boring. Kitne log hain jo tumhari tarah zindagi jeena chahte hain Shilpi ki Monday ko office na jaye.
2: Right.
1: Ye dekho. Ise kehte hain log jo grateful nahi hote hain. Filhal weekend pe kya kiya Shilpi?
2: Weekend pe kuch nahi kiya. Bas ghar pe khana banaye, khaye aur movies dekhi.
1: Main wapas aaunga, dekhi?
2: Nahi. Nahi dekhi abhi tak.
1: Haan, achhi movie hai dekhna. Filhal aisa kya karte ho aap jo aapko office na jana achha nahi lagta?
2: मैं मार्केटिंग में हूँ अभी. मैं सुन रही थी रवि का
1: तो मार्केटिंग वाले तो खुशी रहते हैं क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलूंगी. मेरे मार्केटिंग वाले सुन रहे होंगे. फिलहाल शिल्पी विल प्ले द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. यू गेट 5 सेकंड्स. आई एम गोना गिव यू फ्यू कैटेगरीज. 3 चीजें बतानी है आपने 5 सेकंड के अंदर. ठीक है?
2: ओके.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह या.
1: फटाफट से 3 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिनका नाम शुरू होता है विद द लेटर वी.
2: वेदिका वानी कपूर
1: सही है. अच्छा टाइम खत्म हो गया. फटाफट खेलने वाला. अच्छा मुसाफिर कैफे वाली वेदिका पिंटू. मैं उसको सुधा के नाम से ही जानूंगी आई थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ. ऑलराइट मूविंग ऑन. 3 बॉलीवुड सॉन्ग्स जिनमें आता है द वर्ड हम.
2: हम दिल दे चुके सनम.
1: हम तेरे हैं कौन. हम आपके हैं कौन था मैडम. हम तेरे हैं कौन. 3 ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रिज में मिलेंगी. आपके फ्रिज में.
2: बेल पेपर.
1: क्या?
2: दही और मिर्ची. बेल पेपर, दही और मिर्ची.
1: ऑलमोस्ट देयर. नॉट बैड. 3 थिंग्स दैट आर एब्सोल्यूट नो नो फॉर यू व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप. कोई भी रेड फ्लैग नहीं है शिल्पी का. कुछ भी नो नो नहीं है. सब चलता है.
2: चीटिंग.
1: नहीं बस टाइम कब का खत्म हो गया बहन. मैं कह रही हूँ मार्केटिंग में हो बट डोंट सेटल फॉर बेयर मिनिमम. इट इज नॉट राइट. 3 थिंग्स दैट यू फाइंड ओनली एट अ बीच.
2: सैंड, वाटर एंड
1: छतरी. 5 सेकंड. 3 शाहरुख खान की मूवीज. ये तो इजी है यार.
2: कुछ होता है
1: और मिस्टर इंडिया. दिल चाहता है. तुम ऑफिस जाओ.
0: 5 सेकंड रूल.
3: ओह या.
1: घर पे रह के आपके मुझे हाल सही नहीं लग रहे हैं. यू शुड गो टू ऑफिस. शुड आई टेल यू हाउ यू प्लेड दिस गेम?
2: या नो नो आई डोंट वांट टू नो.
1: जाओ कल ऑफिस जाओ. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. दवाई वहीं मिलती है शायद शिल्पी को. Have a great evening. Lovely talking to you.
2: Thank you.
1: Bye. Yeah, 5 second rule. Like I said, गाड़ी में बहुत easy sound करता है, but है नहीं. आपने खेलना है तो 800-1062 is the number to dial.
0: Big 106.2.

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: अगर आपके भी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फ्रेंड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मैसेज करके आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये खबर सही है कि अबू धाबी इज गिविंग अवे फ्री यूएई वीजाज टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, तो हाँ ये खबर सही है, बट पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उन्हें भी दीजिए एंड आपके पास भी होनी चाहिए. फॉर दैट देयर इज अ रील व्हिच इज अप ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. 106.2 बिग एफएम इट इज. राइट, सो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है then Abu Dhabi is giving you free visa, but to qualify you'll need to book through participating travel partners or online travel agencies. You have to stay at least 3 nights in an Abu Dhabi hotel and book a return flight from India. Ye offer jo hai ye available hai until the 31st of October 2026, and this program will only cover the first 20,000 eligible UAE visas. So ye sari details jo hai apne फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स जो इंडिया में हैं, बस खबर सुन के आपसे मैसेज पे डिटेल्स मांग रहे हैं उन्हें आप दे सकते हैं. इनफैक्ट ऑलवेज गिव देम द राइट सोर्स एंड वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दैट वी गिव यू इज फ्रॉम द लेजिट गवर्नमेंट सोर्सेज. आप हमें उन्हें एक्चुअली रील भी फॉरवर्ड कर सकते हैं जो हमने इंस्टाग्राम पे डाली है. इट्स गोना मेक योर लाइफ इजी. 106.2 बिग एफएम दैट इज आवर इंस्टा हैंडल. ऑल्सो आज 25 साल हुए हैं दिल चाहता है को. There's another movie जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी and as big as दिल चाहता है. I'll give you all the details in just a bit. फिलहाल we've got Diljit Dosanjh and Badshah.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: हांजी ये है बिग थ्रिल, मैं हूं मानसी। एंड कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी इज अ बून एंड अ बेन। जब से ये ऑनलाइन जूम मीटिंग्स, टीम मीटिंग्स आई है, तो मीटिंग्स का कोई वक्त नहीं है। किसी भी टाइम पे रिक्वेस्ट कर दिया जाता है कि ज्वाइन द टीम्स मीटिंग, ज्वाइन द जूम मीटिंग। एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दूल्हे ने मंडप से टीम्स मीटिंग ज्वाइन की है, एंड दुल्हन जो है वो इतनी गुस्सा हुई कि उसने उसके लैपटॉप के साथ, गोपी बहू ने जो एमजी के लैपटॉप के साथ किया था, उससे भी बुरा हाल किया है। बट माई क्वेश्चन इज द वियर्डेस्ट प्लेसेस जहाँ पे आपने अपने ऑफिस की टीम्स मीटिंग या जूम मीटिंग ली है, मुझे बताइए। एंड 800-1062 इज द नंबर। हुआ तो होगा आपके साथ भी कभी ना कभी। फिलहाल आज दिल चाहता है को 25 साल हुए हैं। आज ही के दिन एक और कमाल मूवी रिलीज हुई थी, अगेन एज बिग एज आइकॉनिक, कल्ट स्टेटस है इस मूवी का। अब आपका हिंट है 70 मिनट। That's it. That's your hint. 70 मिनट अगर याद आ गया है तो मुझे बताओ 800-1062 पर।

0: ये जो वक्त है ना यहाँ जो हम काट रहे हैं ये बहुत अच्छा टाइम है। देखना आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे।
1: बिग टाइम चेक 7:10। बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ बेबी लेट्स गो राइट नाउ देखो मुझे वेट ना इतने कराओ लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव

0: मेरा सेंस अभी वो बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
3: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
2: अलरास बोले तो
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
2: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2 brought to you by selfdrive.ae.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
6: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत।
7: दिन भर एक्टिव और फोकस रहना है तो डाबर शिलाजीत लीजिए, स्ट्रेच कीजिए और अपनी एनर्जी को रिचार्ज कीजिए। छोटी आदतें बड़ा इम्पैक्ट।
6: ताकत का तरकाव विद डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिंस एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
8: डिड यू हियर दैट? दैट्स द साउंड ऑफ समथिंग बिग लैंडिंग एट पापा जॉन्स। New oven-toasted sandwiches are here, crafted on sourdough ciabatta bread with an exceptionally crunchy bite that's impossible to ignore. 6 bold varieties, from the fiery Nashville chicken to the bold buffalo chicken, plus pepperoni, spicy chicken ranch, margarita, and garden special. Turn up the crunch. Try the new Papa John's sandwiches. Download the Papa John's app today. Better ingredients, better pizza. Papa John's.
9: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
11: स्टिल 39, लो जाएगा अराउंड 36, फिलहाल ह्यूमिडिटी है 51% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25 प्लस आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: फायर है तू,
1: वाइल्ड फायर है।
2: मेरा नाम है पुष्पा, पुष्पराज, अपने दम पे बनाए मैं, नाम काफी है, पहचान की जरूरत नहीं है।

0: शॉपिंग करती है और आप टीम्स मीटिंग करते हो।
1: हाँ, तो मैं यास मॉल में वी गेट दीज स्मॉल हब्स वेयर यू कैन यू नो इट्स क्वाइट एंड यू कैन अटेंड टू अ मीटिंग।
0: चलो मॉल इज स्टिल अ डीसेंट प्लेस बट शादी का मंडप आई थिंक इज अ बिग नो नो। ऐसी कोई नॉन मीटिंग वाली जगह पे आपने मीटिंग ली है?
1: नहीं नहीं, मैं जनरली ऑफलाइन चला जाता हूँ अगर ऐसी कोई जगह पर जाता हूँ।
0: अच्छा, आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है कि इमरजेंसी है जैसे कि बस दुनिया का सबसे बड़ा काम आप ही कर रहे हो?
1: नहीं।
0: तो बीवी गुस्सा नहीं होती है कि मॉल में शॉपिंग कराने लाए हो कि मीटिंग्स करने?
1: नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग है, मैं हर जगह पिकअप ड्रॉप ऑफ सर्विस करता हूँ।
0: टिल द टाइम यू आर नॉट आस्किंग हर टू रश, शी इज फाइन आई गेस।
1: राइट,
0: वेरी नाइस। सो ठीक है यार, आपको ऑफिस इतना वो नहीं है, ऑफलाइन वगैरह आप होते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील।
1: या आई एम लकी दैट
0: वे। या टच वुड।
1: जी बिल्कुल।
0: थैंक यू सो मच। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग एंड हैव अ ग्रेट ड्राइव बैक होम।
1: थैंक यू,
0: बाय। सो यही मैं पूछ रही हूँ, इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे भी सवाल यही है कि कौन सी वियर्ड जगह पे आपने अपने ऑफिस की मीटिंग ली है क्योंकि लेना जरूरी था, इमरजेंसी थी। मुझे बताओ 800-1062 पे, इंस्टा पे भी जा सकते हैं आप एंड यू कैन लीव योर कमेंट्स। 106.2 बिग एफएम इट इज।
2: बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: टेक्नोलॉजी बून एंड बेन राइट. अब जब से ये जूम एंड टीम्स मीटिंग आई है, कभी भी किसी भी वक्त बेवक्त मीटिंग्स होती हैं. एंड एक वीडियो वायरल हो रहा है मंडप से, भाई दूल्हा टीम्स मीटिंग ले रहा है, दुल्हन जो है वो इतना गुस्सा हो गई कि गोपी बहू ने तो लैपटॉप धोया था, इसने उसे धो दिया है. फिलहाल अंकित, वियर्डेस्ट प्लेस जहाँ पे आपने टीम्स मीटिंग या जूम मीटिंग ली है?
2: मॉल में, क्योंकि माय वाइफ, व्हेनेवर आई टेक हर टू द मॉल, ज्यादातर सैटरडे को होता है, सैटरडे को मेरा वर्किंग होता है,
1: तो वो

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: तो एक स्टोरी वायरल हो रही है, इनफैक्ट वीडियो वायरल हो रहा है। बंदा शादी के मंडप में टीम्स मीटिंग ले रहा है। तो मैंने आपसे ये पूछा है कि ऐसी कौन सी वियर्ड जगह या वियर्ड टाइमिंग पे आपने ऑफिस की मीटिंग जो है वो ऑनलाइन अटेंड करी है। राइट नाउ गॉट निखिल, एंड निखिल वाज टेलिंग मी कि अगर मिलियन की डील होगी तो क्या मंडप में भी ले लेंगे मीटिंग, है ना?
2: अरे नहीं रे, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा भाई।
1: क्यों?
2: सबसे पहले प्रायोरिटी है, नहीं नहीं नहीं, प्रायोरिटी है मंडप पे, मेरी वो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल में सबसे प्रायोरिटी फैमिली होती है।
1: अभी मुझसे कह रहे थे ऑफ एयर कि अगर मिलियन की होगी तो लेनी पड़ेगी। अभी जैसे ही यहाँ पे आए कह रहे नहीं नहीं फैमिली प्रायोरिटी होगी। आपकी होगी शादी?
2: हाँ जी मेरी होगी शादी।
1: अच्छा, तो अगर ऐसे वीकेंड पे बीवी के साथ घूम रहे हो, शॉपिंग वॉपिंग करा रहे हो, अर्जेंट कोई मीटिंग ऑफिस की आ गई ऑनलाइन, सो विल यू टेक दैट मीटिंग और यू विल से कि नहीं मेरा पूरा वक्त वीकेंड पे मेरी बीवी के लिए?
2: नहीं, ये देखो अब ये मेरे जो पार्टनर है, मेरी वाइफ है, तो वो बोलेगी कि आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शी इज कंफर्टेबल। अगर इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो डेफिनेटली मैं लूंगा और वो भी मेरे को सपोर्ट करेगी।
1: देखो आप भी काम करते हो, मैं भी काम करती हूँ, ऑफिस वालों के हिसाब से एवरीथिंग इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, तो उनके लिए हर चीज अर्जेंट इम्पोर्टेंट होती है।
2: जी जी जी, तो फिर लेनी पड़ेगी ना, तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर अर्जेंट है तो डेफिनेटली, एंड इन दिस वे माई वाइफ ऑल्सो सपोर्ट्स मी।
1: वेरी नाइस, ये जिस बंदे की मैं बात कर रही हूँ ना, उसकी बीवी ने उसे, होने वाली बीवी ने उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। गोपी बहू ने लैपटॉप धोया था, इसने उसको धो दिया।
2: ओए होए,
1: फेरों के बीच में पंडित जी रुकिए वन सेकेंड, मेरी टीम्स मीटिंग आ रही है, चौथा फेरा हम उसके बात करेंगे। बहुत बुरी धुलाई है, मतलब मैं कह रही हूँ ना, टेक्नोलॉजी इज अ बून एंड अ बेन। पहले जब ये सब नहीं था ऑनलाइन मीटिंग्स एंड ऑल, तो बंदा ऑफिस टाइम में ही मीटिंग करता था। कभी ऐसा नहीं है कि मतलब वर्क फ्रॉम होम का दिन है, आप जैसे ही बाथरूम का है वैसे ही मीटिंग शुरू हो गई, ऐसा कुछ हुआ है?
2: नहीं नहीं, मेरा वैसा नहीं रहता वर्क फ्रॉम होम, आई एम मोस्टली, हाँ मेरा
1: आज तक उन्हें ये बात पता है कि नहीं, शायद इस वक्त अगर सुन रहे होंगे तो पता चल गई होगी, बट दैट वॉज वेरी फनी। बट यू आर वेरी वेरी लकी दैट आपको बेवक्त इन ऑनलाइन मीटिंग्स का हिस्सा नहीं बनना पड़ता है। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग निखिल, एंड थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू जी, थैंक यू, टेक केयर,
1: यू टू, बाय
2: बाय बाय।

0: 106.2. The beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. Hello. सुन रहे हो ना?
3: Hey.

0: she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun.
1: Come on, come on.
0: Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae and Dabur Shilajit.
2: Good evening. This is the Big Thrill, Mansi. And 10th of August actually is a very iconic day when we talk about cults. Aaj ke din Dil Chahta Hai release hui thi. 25 years of Dil Chahta Hai. But aaj ke din 2007 mein ek aur cult release hui thi. Kabir Khan, 16 ladkiyan aur 70 minute. 70 minute hai tumhare paas. और ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट होंगे. आई थिंक इससे आसान हो नहीं सकता है. शमित अमीन की ये मूवी आज ही के दिन रिलीज हुई थी, राइट बिफोर इंडिया 60th इंडिपेंडेंस डे. इफ यू हैव गेस्ड द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, व्हिच आई एम श्योर यू हैव, गिव मी अ कॉल ऑन 800-1062.
3: वाओ. Yeah.

0: मैं गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं।
1: बिग 106.2

0: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
1: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: 38 degrees, low jayega around 36. Filhal pretty humid, 54% per humidity.
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: holiday deserves selfies, not stress. Fast claims, fair prices, real protection. For your travels, car, health, home, life or business, call 800-ALFRED.
1: That was a song of the hour, and this, I am guessing, for millennials is going to be the movie of this year, 2026.
2: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: क्योंकि हमारा भी पुराना रिश्ता है इमरान हाशमी से. कभी छुप छुप के अगर आपने इमरान हाशमी के गाने देखे हैं तो मतलब मिलेनियल हो तुम. एंड बहुत एक्साइटेड हो 14 को आने वाली आवारापन 2. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल म्यूजिक. आई थिंक इमरान हाशमी की एक और USP है कि उनकी फिल्मों के गाने कमाल होते हैं. टॉकिंग अबाउट अ मूवी, आज ही की रिलीज हुई थी 2007 में, अगेन अ कल्ट क्लासिक मूवी अबाउट 16 वुमेन फ्रॉम कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. दे कैन नॉट स्टैंड ईच अदर एट फर्स्ट बट दे एंड अप ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया टुगेदर. A movie जिसमें एक क्रिकेट प्लेयर का फियांसे gets dumped because he did not take his partner's sports career seriously. And of course a movie that is featuring this iconic character जिसमें एक हरियाणवी लड़की है, एक चंडीगढ़ की लड़की है, एंड दोनों की काफी लड़ाई होती है. 70 is one number in this movie जिसे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है. एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन हिस्ट्री आफ्टर दिस मूवी 70 मिनट को याद रखती है. चौटाला, दैट इज योर लास्ट हिंट. अगर आपने गेस कर लिया है द मूवी जो आज के दिन 2007 में रिलीज हुई थी तो मुझे फटाफट बताइए 800-1062 पर. वाइल यू आर एट इट, इन अ वर्ल्ड ऑफ रिक्रिएटेड म्यूजिक, वी हैव गॉट अनदर वन.

0: on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Good evening, यह है Big Thrill Mansi, and आज के modern lifestyle में ताकत की कमी होना, weak feel करना,

0: The Big Thrill with Nancy on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: 10th of August, of course, 2001 में दिल चाहता है रिलीज हुई थी, but on this very day, एक और बहुत ही कमाल मूवी रिलीज हुई थी, again, a cult and... I think almost all of you got it right. Joining us this evening is Raman. Raman, कैसे रहा मंडे?
2: मंडे बहुत अच्छा था. मंडे
1: अरे वाह, काम पे है. आप पहले हो जो कह रहे हो मंडे बहुत अच्छा था.
2: अभी तक काम पे है मैडम जी.
1: आपका खुद का काम होगा तभी इतने एक्साइटेड हो आप.
2: Yes.
1: हाँ, तभी मैं समझ गई. नौकरी वाले नहीं इतने एक्साइटेड होते हैं मंडे को. फिलहाल रमन,
2: हम तो अभी क्या है
1: जी? मैं बात कर रही हूँ अबाउट दिस मूवी जो आज ही के दिन 2007 में रिलीज हुई थी. 16 लड़कियां 70 मिनट, कबीर खान द कोच. मूवी का नाम क्या था?
2: चक दे इंडिया.
1: बिल्कुल सही जवाब. कितनी बार देखी है ये मूवी आपने?
2: मैंने देखी होगी 4-5 बार.
1: वेरी नाइस. तो ये डायलॉग तो आपको रटा हुआ होगा?
2: डायलॉग तो अभी रटा हुआ नहीं है, पर फिल्म बहुत अच्छी थी.
1: 4-5 बार
2: तो देखी. 70 मिनट तुम्हें दिए जिंदगी के.
1: दिए नहीं तुम्हें जिंदगी, 70 मिनट है तुम्हारे पास और ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट बन सकते हैं.
2: जिंदगी आ गई ना, जिंदगी कहीं नहीं गई हमें छोड़ के.
1: बट क्या मूवी थी. मतलब शाहरुख खान ने इतनी कमाल मूवीज की है, बट आई हैव टू से ये आइकॉनिक है.
2: उसमें जितने भी लड़कियों के रोल थे, एक्ट्रेस के रोल थे, सबके रोल्स बड़े अच्छे दिए गए थे.
1: एंड उन्होंने 4-5 महीने जो ट्रेनिंग भी की थी हॉकी खेलने की, बहुत ब्रिलियंट.
2: जो स्टार्टिंग फिल्म की थी वो सबसे रियलिटी थी, वो जो हुआ था हमारे साथ हॉकी के अंदर.
1: ब्रिलियंट मूवी आई थिंक.
2: उसके बाद की मूवी उस पे बेस उसके अब नहीं पता, लेकिन जो उसमें जो स्टार्टिंग का सीन दिखाया गया, शाहरुख खान का जो रोल दिखाया गया, वो रियलिटी में
1: वो कोच पे बेस्ड है, लूजली बेस्ड.

0: इस डू स्कोच पे हुआ था। यस, शिमित अमीन ने बड़ी कमाल मूवी बनाई थी एंड आज भी आइकॉनिक है। आई थिंक वो सारी लड़कियां आर स्टिल नोन एज चक दे गर्ल्स।
1: टॉपिक भी डिफरेंट था फिल्म का,
0: हॉकी
1: स्पोर्ट्स के ऊपर कमी फिल्में बनती हैं
0: और क्रिकेट पे ज्यादा बनती हैं, वैसे भी हॉकी जैसा स्पोर्ट लिया था। तो बहुत ही कमाल मूवी थी एंड आज ही के दिन रिलीज हुई थी, तो वी सेलिब्रेटिंग दिस आइकॉनिक कल्ट क्लासिक। थैंक यू सो मच रमन सही जवाब देने के लिए।
1: थैंक यू मानसी, थैंक यू आपसे बात करने के लिए, अच्छा लगा उसके लिए, थैंक यू।
0: 70 मिनट नहीं, आपके पास 4 घंटे होते हैं रोज मुझसे बात करने के लिए।
1: आप बात करते हैं, बात करते नहीं हो।
0: हाय, ये कैसा इल्जाम है?
1: बहुत आपने बात करी है।
0: आप
1: पीछे
0: मुझे...
1: आपने 3 दफा मेरा फोन काटा है नाम सुनने के बाद।
0: हाय रब्बा, ये झूठे इल्जाम जैसे कबीर खान पे लगे थे ये मुझ पे लगाए जा रहे हैं।
1: ये मानसी में लगाए गए सच्चे इल्जाम है।
0: नहीं नहीं सर, मैं क्यों फोन काटूंगी आपके और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग फोन का नेटवर्क करा रहा है, ऐसे मैं आपका फोन कभी नहीं काटती हूँ। यू हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट इवनिंग एंड थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मानसी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।

0: कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड, हार न मान मेरे शेर, मजबूत बन मजबूत, मिटाओ कमजोरी, बढ़ाओ रोजाना जिंदगी की ताकत, शक्ति और जोश। डाबर शिलाजीत कैप्सूल्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट फॉर मेन, आपकी जीत डाबर शिलाजीत। कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
1: नमस्ते,
2: ओला,
1: अस्सलाम वालेकुम,
3: बोंजूर,
4: नी हाओ।
3: डिड यू नो, नाउ जस्ट टाइप एंड रेंट अ कार विद सिया। Yes, even if you type in Gen Z lingo. Introducing Sia, your AI assistant at selfdrive.ae. Sia helps you rent the right car in just a few minutes. No scrolling. Visit selfdrive.ae. Sia is waiting to assist you.
5: InsuranceMarket.ae. Flights booked, bags packed, brain already on holiday. Fast claims, fair prices, real protection. For travel insurance and more, insurancemarket.ae.
6: Hey, Sham! Hey, Raju!
7: Chane nahi re, Baba. Aapte, Babu Rao, Ganpat Rao, aapte. Bol.
8: Big 106.2, the beat of Bollywood. Big 106.2, that's my song.

सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय insurancemarket.ae फॉर द बेस्ट इंश्योरेंस डील्स इन द UAE कॉल 800-ALFRED-247 द बिग जेल Where every song feels like a deep breath after a long day. Only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2 The Beat of Bollywood। आप सुन रहे हैं Big 106.2 The Beat of Bollywood।

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, क्या प्यार ये मेरा कमजोर था यारा, जो कि ये दिल के हजारों टुकड़े और छोड़ा मुझे बेसहारा।